0: What's the word? This your boy Kwai the Last Word, and I am the voice of today's generation on YCRadio.org. What's the word?
1: धोखा धड़ी चेतावनी. अपना क्यों नहीं लॉगिन पासवर्ड या MAF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF A अनुरोध का उत्तर न दे. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF A कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: Ladies and gentlemen of York College, it is I, Giovanni Anglin, and I have some exciting news pertaining YCRadio.org, the voice of today's generation. We are now featured on an app called TuneIn, that is TuneIn. And TuneIn allows you to listen to our radio show, it allows you to listen to our music, and it allows you to listen to all the things we have to offer here at YC Radio. So in order to get this app, for you Android listeners out there, you can get it on Google Play, and for all you people with Apple products, you could get it on the App Store. Thank you for listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: Where do you want to go to lunch?
4: I'm having a stroke.
3: Did you hear what I said?
4: I'm having a stroke.
3: Why aren't you answering me?
4: I'm having a stroke.
5: When someone is having a stroke, they may not be able to say it with words, but their body language will tell you loud and clear. Look for FAST. F, face drooping. A, arm weakness. S, speech difficulty. T, time to call 911 immediately. Know the sudden signs. Spot a stroke fast. Visit strokeassociation.org. Brought to you by the American Stroke Association and the Ad Council.
6: Hey, this is Kimale, and I want you to tune in at ycradio.org. Make sure you tune in. I'm serious.